उकाबार अलिकी बना हूँ। सिड़ सिड़ की वो वोनी रोई रोई की इजा आड़िया बिकामी था ही इदा सिड़ सिड़ की इथोनी नी दियोगा की इदा सिड़ सिड़ की हा नाजा जा खाने नी दियोगा की जाबुनी हा नाजा जा उखाने।